0: மூலம் இன்வெஸ்டர் விழிப்புணர்வு முயற்சி. மேலும் விவரங்களுக்கு செபி இன்வெஸ்டர் வெப்சைட்டை பார்க்கவும் அல்லது செபி சார்த்தி ஆப் டவுன்லோட் செய்யவும்.
1: PCPNDT कानून के विभिन्न प्रावधानों के तहत लिंग जांच करने और करवाने वालों को 3 से 5 साल तक की कैद और जुर्माने की सजा है। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।

0: செபி மூலம் இன்வெஸ்டர் விழிப்புணர்வு முயற்சி. மேலும் விவரங்களுக்கு செபி இன்வெஸ்டர் வெப்சைட்டை பார்க்கவும் அல்லது செபி சாத்தி ஆப் டவுன்லோட் செய்யவும்.
1: क्या आपको किसी सरकारी विभाग से जुड़ी कोई शिकायत दर्ज करनी है?
2: तो आपकी सहायता करेगी भारत सरकार के प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग के सीपी ग्राम्स पोर्टल पर समाधान दीदी।
1: समाधान दीदी 22 भारतीय भाषाओं में आपकी बात सुनती और समझती है। आपको बस अपनी शिकायत को बोलना है। समाधान दीदी की AI तकनीक आपकी शिकायत को सीधे सही मंत्रालय तक पहुंचाती है।
2: आज ही www.pjportal.gov.in पर जाएं और अपनी शिकायत दर्ज करें।
1: सारी शिकायतों का समाधान सीपी ग्राम्स की समाधान दीदी।

0: E20 பெட்ரோல் பத்தி ஏன் இவ்ளோ கன்ஃபியூஷன்?
1: கன்ஃபியூஷன் வேண்டாம். E20 டெஸ்டிங்ல அப்நார்மல் இன்ஜின் வியர் எதுவும் கண்டுபிடிக்கல. ஃபியூல் சிஸ்டம் மெட்டீரியல்ஸும் E20 கம்பாட்டிபிலிட்டிக்கு டெஸ்ட் பண்ணிருக்காங்க.
0: அப்போ கன்ஃபியூஷன் இல்ல, only கான்ஃபிடன்ஸ்.
1: E20 ஃபாக்ஸ் நம்புங்க. இந்திய அரசின் எண்ணெய் சந்தைப்படுத்தும் நிறுவனங்களால் பொதுநலன் கருதி வெளியிடப்பட்டது.
2: सुनती हो, कमाल ही हो गया.
3: क्या हो गया ऐसा?
2: सिलेंडर आने में देरी हो रही थी ना, देखो आज आ गया.
3: ये कमाल कैसे हो गया?
2: मैंने www.pgportal.gov.in पर जाकर अपनी कंप्लेंट को बोल कर दर्ज किया और देखो तुरंत एक्शन हुआ.
3: ये तो बहुत बढ़िया पोर्टल है.
2: 22 भारतीय भाषाओं में आप अपनी शिकायत दर्ज कराएं, अपनी समस्या का समाधान और प्राथमिकता का अनुभव पाएं, जैसे हमने पाया. सारी शिकायतों का समाधान CP Grams की समाधान दीदी.

PCPNDT कानून के विभिन्न प्रावधानों के तहत लिंग जांच करने और करवाने वालों को 3 से 5 साल तक की कैद और जुर्माने की सजा है। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।

0: कानून के तहत लिंग जांच करने और करवाने वाले दोनों को 3 से 5 साल तक की कैद और जुर्माने की सजा है।
1: स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।

0: उमंग
1: CIET प्रस्तुत करता है
0: उमंग उमंग उमंग उमंग।
1: आप सभी श्रोताओं को आपके मित्र अजीत का नमस्कार जोहार। तो आइए सुनते हैं सुविचार हमेशा की तरह। तो हमें सुविचार भेजा है माँ महामाया चौक मेघापारा लोरमी छत्तीसगढ़ से रामकुशल पटेल, संतोषी पटेल, दीपांशु पटेल,

दिव्या पटेल, दीपांजलि पटेल और टेकलाल पटेल जी ने लिखते हैं, समय चाहे कितना भी कठिन क्यों ना हो, हिम्मत मत हारिए, क्योंकि अंधेरी रात के बाद ही नई सुबह की पहली किरण दिखाई देती है। बस विश्वास रखिए, अच्छे कर्मों का फल देर से मिलता है, लेकिन मिलता जरूर है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका इस उम्दा संदेश के लिए। आइए अब सुनते हैं श्रोताओं के नाम और उनके प्यारे प्यारे संदेश। तो आइए सुनते हैं सबसे पहला संदेश। लिखते हैं उद्घोषक विमलेश जी और अजीत जी, नमस्कार। हम छत्तीसगढ़ सहसपुर से छोटकू साहू, मोहित राम साहू, लोकेश साहू, रामकिशन साहू, दुलीचंद साहू और सतीबाई साहू हैं। आपको बताना चाहते हैं कि उमंग एनसीईआरटी का कार्यक्रम बहुत हमें पसंद है। हम सादर आभार प्रकट करते हैं और बहुत बहुत धन्यवाद भी आपके लिए प्रकट करते हैं। साधुवाद। अगला संदेश हमें मिला है माँ महामाया चौक मेघापारा लोरमी छत्तीसगढ़ से रामकुशल पटेल और संतोषी पटेल जी का। लिखते हैं, विमलेश जी, अजीत जी, सादर नमस्कार। 14 सितंबर दिन सोमवार का कार्यक्रम बहुत ही खास और शानदार रहा। टिम टिम तारा बोलो टिम टिम तारा, आ गया है बच्चों का जादुई पिटारा, इस गीत ने मन मोह लिया। पूरा कार्यक्रम बेहद रोचक, मनोरंजक और ज्ञानवर्धक लगा। बच्चों के लिए ऐसी सुंदर और सीख देने वाली प्रस्तुति के लिए आप दोनों को और साथ ही साथ सीआईटी एनसीईआरटी की तकनीकी टीम को बहुत बहुत बधाई और साधुवाद। अगला संदेश हमें मिला है भिलाई छत्तीसगढ़ से उत्तम सिंह जंघेल, मोरस जंघेल, अनिल कुमार, अजीत कुमार, आयुष जंघेल और नंदिनी जंघेल जी का। धमथा ग्राम सुखनी कला से अमित जंघेल, शकुन जंघेल, आरुषि, ओशिका और अंजलि जंघेल जी का। छत्तीसगढ़ मदनपुर कवर्धा से श्रवण कुमार साहू, योगेश साहू, राहुल साहू और शिवम साहू जी का। और एक संदेश और हमें मिला है, लिखते हैं रोहांसी छत्तीसगढ़ से मुकेश साहू और नंदिनी साहू जी का। एक संदेश और सुनते हैं जिसे लिखा है हमारे चिर परिचित श्रोता योगेश ठाकुर जी ने, और आपने लिखा है करसोग डिस्ट्रिक्ट मंडी हिमाचल प्रदेश से। लिखते हैं, विमलेश जी एंड अजीत जी, गुड मॉर्निंग। इट वॉज ए ग्रेट प्लेजर टू लिसन टू द पोएम द क्रो इन म्यूजिकल मैनर टूडे। What a coincidence it is that I read this poem in my childhood in the textbook and got it listened to it in a musical form. I liked this poem and song very much. Thank you very much. आप सभी श्रोताओं का बहुत बहुत धन्यवाद संदेश भेजने के लिए। तो आइए श्रोताओं, अब शुरू करते हैं एक और रोचक आविष्कार की कहानी। श्रोताओं, सच्चाई तो ये है कि हम इंसान भी बड़े अजीब हैं, है ना? जब कोई तकनीक हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में बहुत आम हो जाती है ना, तो हम भूल ही जाते हैं कि उसने दुनिया को कैसे बदल दिया। अब पेन ड्राइव को ही लीजिए ना, छोटी सी उंगली भर का टुकड़ा है, लेकिन इसके अंदर हमारी पूरी पढ़ाई, बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स, हजारों तस्वीरें और न जाने कितने वर्षों का डेटा बंद है। लेकिन श्रोताओं, जिसे आज हम इतनी आसानी से जेब में डालकर घूमते हैं ना, 25-30 साल पहले किसी ने सोचा भी नहीं था कि इतनी सी चीज अलमारी भर की भारी भरकम फाइलों को चुटकी में निगल लेगी। आपको याद होगा 90 के दशक का वो दौर, जब कंप्यूटर क्लास या दफ्तरों में हम वो चौकोर पतली काली फ्लॉपी डिस्क लेकर घूमते थे, है ना? जरा सी धूल लगी या बैग में मुड़ी तो सारा काम खत्म। और फ्लॉपी की कुल क्षमता कितनी थी आपको पता है? महज 1.44 मेगाबाइट, यानी MB। यानी आज के दौर में एक MP3 गाने का आधा हिस्सा भी उसमें ठीक से नहीं आ सकता। आज हमारे पास चलता फिरता डेटा बैंक है, यानी पेन ड्राइव। पता है श्रोताओं, इसका आविष्कार हुआ था एक आविष्कारक के भयंकर गुस्से और शर्मिंदगी के कारण। किस्सा है साल 1998 का। इजराइल के एक कंप्यूटर इंजीनियर थे, नाम था डोब मोरान। उनकी अपनी एक छोटी सी कंपनी थी। वे कंपनी को बड़ा करना चाहते थे और इसके लिए उन्हें कुछ बड़ी धनराशि की जरूरत थी। मोरान अपनी कंपनी के लिए धन जुटाने के लिए अमेरिका पहुंचे। वहां एक नामी निवेशक के सामने उन्हें अपना प्रेजेंटेशन देना था। तो हुआ ये कि मोरान बड़े आत्मविश्वास के साथ मीटिंग रूम में पहुंचे, लेकिन ऐसे नाजुक वक्त पर उनका लैपटॉप चालू ही नहीं हुआ। मोरान घबरा गए। घबराकर उन्होंने वहां मौजूद दूसरे कंप्यूटर में अपनी फ्लॉपी डिस्क लगाई, और फिर वही हुआ जिसका डर हर कंप्यूटर इस्तेमाल करने वाले को होता है। जानना चाहते हैं क्या हुआ? हुआ ये कि स्क्रीन पर लाल लाल बड़े बड़े अक्षरों में लिखकर आ गया, डिस्क करप्टेड। श्रोताओं, वो बड़ा निवेशक घड़ी देखता रहा, मोरान पसीने पसीने होते रहे। पूरी तरह से उन्होंने कोशिश किया कि वो फ्लॉपी डिस्क खुल जाए, लेकिन डेटा नहीं खुला। अंत में निवेशक आई एम सॉरी बोलकर चल दिया। मीटिंग रद्द हो गई।
और मोरान को उस कमरे से सिर

झुकाकर बेहद शर्मिंदा होकर निकलना पड़ा। तो साथियों, उस शाम होटल लौटते हुए डॉन मोरान गुस्से और लाचारी से भरे हुए थे। उन्होंने टैक्सी की खिड़की से बाहर देखते हुए खुद से एक सवाल पूछा, क्या इंसान ऐसा कोई छोटा मजबूत और भरोसेमंद साधन नहीं बना सकता जो चाबी के गुच्छे की तरह जेब में आ जाए और जिसका डेटा कभी खराब ना हो। बस उनके इसी विचार ने पेन ड्राइव की नींव रख दी, यानी असफलता ही नए विचार की चिंगारी बनी। लेकिन ये हुआ कैसे? श्रोताओं, इसके लिए आपको थोड़ी सी, बहुत थोड़ी सी तकनीकी जानकारी देते हैं। आपको पता होना चाहिए, उस दौर में कंप्यूटर की दुनिया में दो नई चीजें दस्तक दे रही थीं। पहली थी यूएसबी पोर्ट, जिसका इस्तेमाल उस समय लोग सिर्फ माउस या कीबोर्ड जोड़ने के लिए करते थे, और दूसरी थी फ्लैश मेमोरी, यानी ऐसी चिप जिसके कारण बिजली चले जाने पर भी डेटा सुरक्षित रहता था। तो डॉब मोरान ने सोचा कि क्यों ना इन दोनों को एक साथ मिला दिया जाए। मोरान और उनकी टीम ने फ्लैश चिप और यूएसबी कनेक्टर को अंगूठे जितने छोटे खोल में फिट कर दिया। ना किसी तार की जरूरत, ना किसी बैटरी की, और उन्होंने उसे कंप्यूटर पर लगाया। उनके आश्चर्य का ठिकाना ना रहा, कंप्यूटर का कुछ डेटा वहां ट्रांसफर हो चुका था। उन्होंने उसका नाम रखा डिस्क ऑन की, यानी चाबी के छल्ले में लगने वाली डिस्क। आपको पता है श्रोताओं, उसकी स्टोरेज क्षमता कितनी थी? अंदाजा लगाइए। शायद आप सोचते होंगे 1 GB या 2 GB, आपके अलग अलग अनुमान होंगे। लेकिन श्रोताओं, आपको बताना चाहता हूं, उसकी टोटल स्टोरेज कैपेसिटी थी मात्र 8 MB, यानी 8 MB। आज तो 8 MB में हमारे फोन से खींची गई एक अच्छी सी फोटो भी नहीं आती। भले ही ये आज कम लगे, लेकिन श्रोताओं, उस वक्त ये 8 MB पूरे 5 फ्लॉपी डिस्क के बराबर थी। और सबसे बड़ी खूबी ये थी कि ये फर्श पर गिर भी जाए तो इसका डेटा सुरक्षित रहता था। लेकिन श्रोताओं, अब प्रश्न है, अमेरिका और पश्चिमी देशों में इसे यूएसबी फ्लैश ड्राइव या थंब ड्राइव कहा जाता है, तो ये भला पेन ड्राइव कैसे बन गई? इसका नाम पेन ड्राइव कैसे पड़ा? ये भी बड़ा मजेदार किस्सा है। जब ये तकनीक एशियाई बाजारों में आई तो कई कंपनियों ने इसे पतले मार्कर पेन जैसा आकार दिया, जिसमें पीछे एक क्लिप होती थी, और लोग उसे शर्ट की जेब में पेन की तरह रख लेते थे। बस हमारे लोगों ने देखा और झट से नाम रख दिया पेन ड्राइव। और इस नन्ही सी ड्राइव ने ना जाने कितनी चीजों की छुट्टी कर दी। इसने फ्लॉपी डिस्क को सीधे म्यूजियम पहुंचा दिया। जो लोग बैग में सीडी और डीवीडी के भारी भारी कैसेट लिए घूमते थे, जिन पर जरा सी खरोंच आते ही गाने अटक जाते थे, पेन ड्राइव ने इन सब का नामो निशान मिटा दिया। और आज तो कमाल हो गया है श्रोताओं, 8 MB से शुरू हुआ पेन ड्राइव का ये सफर आज 1 TB और 2 TB तक पहुंच चुका है, यानी पूरी दुनिया का ज्ञान, फिल्में और किताबें एक छोटी सी उंगली के पोर जितनी जगह पर समा सकती है। तो अब जरा सोचिए श्रोताओं, अगर 1998 की उस शाम डॉब मोरान की वो फ्लॉपी डिस्क खराब ना हुई होती, तो शायद हम आज भी फ्लॉपी डिस्क और नाजुक सीडी के जंजाल में ही उलझे होते। जी हां श्रोताओं, यही तो है विज्ञान की खूबसूरती। जब कोई भी इंसान किसी परेशानी से तंग आकर एक बेहतर विकल्प ढूंढने की ठान लेता है, तो शुरू होता है नवाचार और दुनिया हमेशा के लिए बदल जाती है। तो दोस्तों, अगली बार जब आप अपने कंप्यूटर में पेन ड्राइव लगाएं, तो 1998 की उस शाम को कभी ना भूलें जिस दिन फ्लॉपी डिस्क खराब हो गई थी और डॉब मोरान ने इस बात को ठान लिया था कि वो इसका विकल्प ढूंढ कर ही दम लेंगे। तो श्रोताओं, आज के लिए बस इतना ही। तो सुनते रहिए हमारा कार्यक्रम उमंग और सीखते रहिए नई नई बातें। तो आइए अब सुनते हैं आज का प्रश्न। आज की ही जानकारी से आज का प्रश्न है, किस व्यक्ति और उसकी टीम ने पेन ड्राइव की खोज की? प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए, किस व्यक्ति और उसकी टीम ने पेन ड्राइव की खोज की? श्रोताओं, आप अपना उत्तर हमारे IVRS नंबर यानी 8800440559 पर या हमारे ईमेल पर यानी audio@cieet.nic.in पर भेज सकते हैं। और हाँ, इंस्टा, लिंक्डइन, फेसबुक और एक्स पर भी आप CIET NCERT को फॉलो कर सकते हैं। आपको बता दें कि NCERT की पाठ्य पुस्तकें डाउनलोड करने के लिए आप NCERT बुक्स PDF किसी भी सर्च इंजन में जाकर टाइप कीजिए, वेबसाइट पर दिए गए विकल्पों का अनुसरण कीजिए और मनचाही पुस्तक तक पहुंचिए। आप यदि इन्हीं पाठ्य पुस्तकों को ध्वनि रूप में सुनना चाहते हैं, तो NCERT ऑफिशियल YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। आप इस चैनल पर हमारे कार्यक्रम न सिर्फ सुन सकते हैं लेकिन उन्हें डाउनलोड भी कर सकते हैं। तो अब बारी है आज के शैक्षिक कार्यक्रमों की। आइए सुनते हैं कार्यक्रम आम की गुठली। कक्षा 3

0: के हिंदी के पाठ्य पुस्तक के एक पाठ पर आधारित इस कार्यक्रम में पौधरोपण का संदेश दिया गया है तथा ये बताया गया है कि मात्र पौधा रोपना ही पर्याप्त नहीं है, पौधे की समुचित देखभाल भी की जानी चाहिए।
1: एक दिन अम्मा बाजार से बच्चों के लिए आम लाई। 1 किलो में 7 आम आए। आम छोटे छोटे और खूब रसीले थे। अम्मा ने उन आमों को धोकर फ्रिज में रख दिया और बच्चों से कहा,
2: शाम को अब्बा दफ्तर से आएंगे, तब तक फ्रिज में आम भी ठंडे हो जाएंगे। रात के खाने के बाद हम आम खाएंगे।
1: मुन्ने को आम बहुत पसंद थे। थोड़ी देर में अम्मा, सीमा और समीर दूसरे कमरे में चले गए। अब 4 साल का शरारती मुन्ना कमरे में अकेला रह गया। उसने इधर उधर देखा तो आसपास कोई ना था। मुन्ने ने मौका पाकर चुपके से फ्रिज खोलकर एक आम उठा लिया और खूब मजे लेकर चूस चूस कर खाया।
3: इतना मीठा आम है, ये आम खाके तो मजा आ गया।
1: फिर मुन्ने ने हाथ मुंह धोकर कुल्ली कर ली और दूसरे कमरे में जाकर दादा दादी के साथ बातें करने लगा। शाम को अब्बा आए। दादा दादी के साथ बैठकर सबने रात का खाना खाया। खाना खाकर अम्मा ने जब फ्रिज से आम निकाले तो 7 की जगह सिर्फ 6 आम थे। अम्मा ने बच्चों से पूछा,
2: क्या आप में से किसी ने 1 आम खाया है?
1: सीमा और समीर ने इनकार में अपनी गर्दनें हिलाई।
3: नहीं अम्मा, हमने तो फ्रिज खोला ही नहीं।
1: मुन्ने को शर्म आ रही थी, फिर भी जी कड़ा करके उसने कहा,
3: नहीं, मैंने तो आम नहीं खाया।
1: अब्बा बच्चों का इनकार सुनकर मुस्कुराए और कहा,
4: आम तो आप लोगों के लिए ही आए थे। अगर आप में से किसी ने 1 आम खा भी लिया तो कोई बात नहीं, लेकिन हाँ, इन आमों की गुठलियाँ बहुत छोटी थी। मुझे तो ये फिक्र हो रही है कि अगर किसी बच्चे ने आम की गुठली भी निगल ली होगी तो आज रात उसके पेट में बड़े जोर से दर्द होगा।
1: इतना सुनना था कि मुन्ना झट से बोल पड़ा,
3: नहीं नहीं अब्बा, गुठली तो बड़ी थी, मैंने तो उसे कूड़ेदान में फेंक दिया था।
1: ये सुनकर सारे लोग हंस पड़े। मुन्ना शर्म से लाल हो गया। पास ही बैठी दादी जान ने कहा,
5: अरे वाह, मेरे मुन्ने ने सच को कबूल करके मेरा दिल जीत लिया।
6: तो बच्चों, आपने सुनी ये कहानी, अच्छी लगी ना? अच्छा, अब आपके लिए कुछ सवाल हैं। ऐसे कौन कौन से फल हैं जिनकी गुठली फलों के अंदर होती है, उसकी एक फेहरिस्त बनाइए। ऐसे कौन कौन से फल हैं जो सिर्फ गर्मियों में मिलते हैं, बीज, पत्ती, फूल और फल, इनके आने की सही तरतीब क्या है? आपने कौन कौन से आम खाए हैं, उनके नाम लिखिए। इन सवालों के जवाब आप अपने वालिदैन, दोस्त और अहबाब से भी चर्चा कर सकते हैं।
0: अभी आपने सुना कार्यक्रम आम की गुठली, और आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम बाल क्रांतिकारी जोरावर सिंह। इस कार्यक्रम में भारत के स्वाधीनता संग्राम के दौरान बहादुरी से अंग्रेजी साम्राज्य का सामना करने वाले और अपना प्राण न्योछावर करने वाले वीर किशोर जोरावर सिंह के बारे में विस्तृत जानकारी दी गई है।
7: भारत वीरों और वीरांगनाओं की भूमि है। जब जब भारत माँ की आन बान और शान पर संकट आया, हमारे वीर और वीरांगनाएं

0: अपने कर्तव्यों से कभी पीछे नहीं हटे। बात है अंग्रेजों के विरुद्ध छेड़े गए स्वतंत्रता संग्राम की, जब हमारे वीर और वीरांगनाओं ने अदम्य साहस, सूझबूझ और मातृभूमि के प्रति कर्तव्य को बड़ी बहादुरी से निभाया। इन वीरों और वीरांगनाओं में कई तो काफी कम उम्र में ही कुर्बान हो गए।
1: ऐसे ही एक वीर बालक थे जोरावर।
2: साथियों, हमें अपने शत्रु की हर चाल का, हर हथियार का और हर रणनीति का जवाब देना है। शत्रु को कभी भी कमजोर नहीं समझना है और हर पल हम सबको उससे चौकन्ना रहना है। आप सब जानते हैं कि हम पर दोहरी जिम्मेदारी है। हमें अपनी रियासत के साथ साथ पड़ोस की रियासतों की भी मदद करनी है, ताकि अंग्रेज हमारी मातृभूमि पर कब्जा ना जमा सकें।
3: वीर जोरावर की जय! वीर जोरावर की जय! जय जेरापुर, जय भारत!
4: जय जेरापुर, जय भारत!
1: राजा जोरावर सिंह। हैदराबाद जैसी बड़ी रियासत से सटी छोटी सी रियासत जेरापुर का महज 15-16 की उम्र का राजा, जिसने 1857 की क्रांति के समय अंग्रेजों से लड़ने के लिए अरब और रोहिल्ला पठानों की एक सैनिक टुकड़ी तैयार की थी।
5: अरे वाह, इतनी सी उम्र में जोरावर राजा बन गए।
1: दरअसल पिता की अचानक मृत्यु हो जाने पर उन्हें यह जिम्मेदारी कबूल करनी पड़ी, क्योंकि वो अपने पिता के उत्तराधिकारी थे और दूसरा, अंग्रेजों के बढ़ते हमलों से मुकाबले के लिए ऐसा करना जरूरी था। खैर, ये वो वक्त था जब 1857 की क्रांति में बुरी तरह मात खाने के बाद अंग्रेज नई नई चालें रचने लगे थे। इसी में एक खतरनाक चाल थी, डिवाइड एंड रूल, यानी फूट डालो और राज करो।
5: अंग्रेजी हुकूमत ने हम भारतीयों को जात पात, भाषा, धर्म और क्षेत्र के नाम पर लड़ाना शुरू कर दिया, ताकि इसका फायदा उठाया जा सके।
6: महाराज, महाराज, हालात खराब हो रहे हैं, लोग आपस में ही लड़ने लगे हैं। हमें कुछ करना होगा महाराज। पड़ोस की दूसरी रियासतों को भरोसे में लेकर और मिलकर काम करना होगा, ताकि इन अंग्रेजों को मनमानी का कोई मौका ही ना मिले।
2: ठीक कहते हैं मंत्री जी, मैं कल ही हैदराबाद जाता हूँ। वो हमारी सबसे बड़ी राजशाही रियासत है
6: जी।
2: वहाँ के निजाम अफजल उद्दौला से बात करूंगा और मुझे उम्मीद है कि वो हमारी बात को अहमियत देंगे।
6: जी महाराज, महाराज अगर ऐसा हो जाए तो ये आपकी यात्रा की एक बड़ी सफलता होगी।
2: बिल्कुल,
6: आपकी सूझबूझ का जवाब नहीं महाराज। वाकई आप अपनी मातृभूमि और जनता की रक्षा के लिए कितने समर्पित हैं। हम तैयारी शुरू करते हैं महाराज।
2: जी मंत्री जी।
6: जी महाराज।
1: जोरावर ने अगले ही दिन एक नेक मकसद के साथ निजाम के दरबार में दस्तक दी।
3: होशियार, खबरदार, रियासते जेरापुर के महाराज जोरावर सिंह दरबारे खास में जलवा अफरोज हो रहे हैं।
7: जोरावर सिंह महाराज आ रहे हैं। महाराज जोरावर सिंह,
8: आइए हमारे दोस्त, तहे दिल से आपका इस्तकबाल है, तशरीफ रखिए और बताएं कि आपने कैसे तकलीफ की, क्या खिदमत की जाए आपकी।
2: निजाम साहब, हम आपसे एक गुजारिश करने आए हैं।
8: जी जरूर, हुक्म करें, हम आपकी क्या मदद कर सकते हैं।
2: देखिए निजाम साहब।
8: जी फरमाइए।
2: फिरंगी हुकूमत की बर्बरता और साजिशें एक बार फिर बढ़ रही हैं। गदर में मिली नाकामी के बाद अब वो हमें आपस में लड़ा रहे हैं
8: जी।
2: इसलिए हमें मिलकर काम करना होगा, ताकि वो किसी साजिश में काम

0: कामयाब ना हो पाए।
1: राजा जोरावर, हम भी ऐसा ही चाहते हैं। हम कल सुबह तफसील से बात करते हैं
0: जी।
1: तब तक आप हमारे खास मेहमान की तरह इस किले में रहें। हमारे वजीर सालार जंग आपके आराम और कल की बातचीत के सारे इंतजाम कर देंगे।
2: जो हुक्म मेरे आका, हम महाराज और उनके सैनिकों का पूरा ख्याल रखेंगे। आइए महाराज।
3: अफजल उद्दौला उर्फ मीर तहनियत अली खान 1857 से 1869 तक हैदराबाद के निजाम यानी शासक थे और यहाँ के पहले शासक कमरुद्दीन खान आसफ जाह के पांचवें वंशज थे। दरअसल भारत में ब्रिटिश शासन के दौरान हैदराबाद रियासत पर नवाबों की हुकूमत रही। खैर, निजाम के दरबार में अपने शानदार स्वागत से जोरावर खुश थे। वहीं निजाम भी उनकी देशभक्ति और सूझबूझ को देखकर हैरान थे।
4: जी हाँ, जीरापुर की जनता के लिए हैदराबाद का साथ बहुत जरूरी था और जोरावर यहाँ काफी उम्मीद से आए थे।
2: ए, सुनो, सारी तैयारियां पूरी है ना?
5: बिल्कुल।
2: देखो, कोई गलती नहीं होनी चाहिए। एक तो जोरावर खुद बहुत बहादुर है, दूसरे उसके अंगरक्षक साय की तरह उसके साथ रहते हैं, और तीसरी बात यह है कि अगर हमारी साजिश कामयाब ना हुई तो फिरंगी हुकूमत हमसे नाराज हो जाएगी और इनामो इकराम की जगह मिलेगी लानत मलामत।
5: हुजूर, आप फिक्र ना करें, सब कुछ वैसे ही होगा जैसे आपने कहा है।
2: लेकिन जरा होशियारी से।
5: जो हुकुम सरकार।

0: John Howard!
1: Connor!
0: But how? तुम चारों तरफ से गिर चुके हो।
1: ये क्या है?
0: You are under arrest.
1: एक सोते हुए निहत्थे इंसान को आधी रात में ऐसे कायरों की तरह गिरफ्तार करते हो? शर्म नहीं आती तुम्हें? हिम्मत है तो हमसे लड़कर दिखाओ। आओ सामने।
0: बहुत हो गई तुम्हारी बहादुरी। फौजियों,
2: हुजूर,
0: बांधो इस बच्चे को जंजीर से।
2: जी।
3: हाँ। छोड़ो मुझे।
0: हाथ
3: मत लगाओ मुझे। मुझसे हाथ हटाओ। मैंने कहा छोड़ो मुझे। हटो यहाँ से।
0: शाबाश, शाबाश, सालार जंग। मैं खुश हुआ। तुम्हें मोटा इनाम दिलवाऊंगा।
2: हुजूर।
1: अच्छा, तो ये सब इसकी कारस्तानी है। एक बुजदिल ही दूसरे बुजदिल का साथ दे सकता है। लानत है तुम पर सालार जंग, लानत है। लालच में तुम इतने गिर जाओगे हमने सोचा ना था।
0: फौजियों, ले चलो इसको।
3: छोड़ो मुझे। छोड़ो मुझे।
4: बाद में अंग्रेजी फौज ने जोरावर पर बहुत अत्याचार किए। उनकी सैनिक तैयारी के बारे में पूछा गया, उनसे क्रांतिकारियों के नाम और ठिकाने पूछे गए, तरह तरह के लालच भी दिए गए, लेकिन वो जरा भी कमजोर नहीं पड़े और बार बार यही कहते रहे कि मातृभूमि से विश्वासघात नहीं कर सकते, चाहे जान ही क्यों ना गंवानी पड़े।
5: जोरावर से सारे राज उगलवाने के लिए थक हार कर कर्नल मेटोस टेलर नाम के एक नए अफसर को नियुक्त किया गया, लेकिन वो जितना ही सख्त था उतना ही दोस्ताना मिजाज का भी था। उसके मन में जोरावर के प्रति हमदर्दी थी। वो और जोरावर जल्द दोस्त बन गए और जोरावर उसे प्यार से अप्पा कहने लगे।
6: देखो जोरावर, अगर तुम प्यार से बचाओगे तो तुम्हें सजा की जगह आम माफी मिल जाएगी और मैं रेजिडेंसी से कहकर तुम्हें मालामाल करवा दूंगा।
1: अप्पा, ये नहीं हो सकता।

0: देखो देखो तुम्हें हमारी दोस्ती की कसम, बात मान लो, मैं तुम्हें कोच नहीं होने दूंगा।
1: ये नामुमकिन है।
0: Why?
1: हमें माफ कीजिए, हम अपनी रियासत और मुल्क दोनों से दगा नहीं कर सकते। हम देशद्रोह नहीं करेंगे, हरगिज नहीं करेंगे।
0: yeah.
1: अप्पा साहब, अब हम मौत का सामना करने के लिए तैयार हैं। हमें जो भी सजा होगी अब हमें मंजूर है।
0: तो नहीं मानोगे। देखो देखो, आजीवन कारावास या फिर मौत की सजा हो सकती है तुम्हें। ये सजा,
1: अप्पा साहब, हमारी बस एक विनती है कि हमें फांसी पर मत चढ़ाइएगा। हमने ऐसा कोई अपराध नहीं किया है जिसके लिए हमें शर्म आए। हमने जो किया हमें उस पर गर्व है। कैद, फांसी या काला पानी, इनमें से कोई भी इतना भयंकर नहीं जितना कि विश्वासघात है। इसलिए हमें फांसी के बजाय तोप से बांधकर उड़ा दीजिएगा। हम कुछ नहीं कहेंगे और जरा भी नहीं डरेंगे, जरा भी नहीं।
0: एक्चुअली यू आर अ फूल।
2: जोरावर की ये बात सुनकर कर्नल टेलर का दिल भी सिहर उठा। बाद में उनकी गुजारिश न मानकर जोरावर को काला पानी की सजा सुनाई गई।
3: काला पानी की सजा?
2: हाँ, काला पानी की सजा। भारत की भूमि से सैकड़ों किलोमीटर दूर अंडमान निकोबार का एक द्वीप है, जहां अंग्रेजों ने स्वतंत्रता सेनानियों को यातनाएं देने के लिए एक जेल बनाई थी।
3: जोरावर को भी अंग्रेज सैनिक नाव से काला पानी की जेल ले जाने लगे।
2: और समुद्र में बीच रास्ते जोरावर ने एक अंग्रेज पहरेदार से रिवॉल्वर छीन ली।
1: काले पानी की सजा से मौत को बेहतर समझता हूं मैं। भारत माँ का बहादुर बेटा हूं। इस सजा को मेरी रियासत का सामान्य सा व्यक्ति भी नहीं पसंद करेगा। फिर मैं तो राजा हूं।
3: एक छोटी सी रियासत के छोटी उम्र के राजा ने देश के लिए बड़ा काम कर दिखाया और मातृभूमि की रक्षा के लिए मौत को गले लगाकर अपना नाम इतिहास के पन्नों में दर्ज किया।
4: तो श्रोताओं, अभी आपने सुना कार्यक्रम बाल क्रांतिकारी जोरावर सिंह। और अब इसी कार्यक्रम के साथ हम अपने आज के उमंग प्रसारण को विराम देने की आज्ञा चाहेंगे। तो अपने मित्र अजीत को उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम यानी जगबंधु, कुसुमलता, चेतना, अरशद, प्रसून और हमारे आज के विशेषज्ञ प्रोफेसर सुमन संजय कुमार जी के साथ आज्ञा दीजिए। नमस्कार।
5: उमंग, उमंग, उमंग, उमंग।
6: நேரிலே இதுவரை NCERT வழங்கிய விளம்பரதார நிகழ்ச்சி கேட்டோம்.

0: முயற்சி. மேலும் விவரங்களுக்கு செபி இன்வெஸ்டர் வெப்சைட்டை பார்க்கவும் அல்லது செபி சார்த்தி ஆப் டவுன்லோட் செய்யவும்.
1: PCPNDT कानून के विभिन्न प्रावधानों के तहत लिंग जांच करने और करवाने वालों को 3 से 5 साल तक की कैद और जुर्माने की सजा है. स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी.

0: 102.6 यह देश का नंबर वन रेडियो, आपका अपना रेनबो। आज का प्रोग्राम संदेश टू सोल्जर्स, मेरे साथ मेरा नाम है शाहिद, और आज के हमारे संदेश टू सोल्जर्स के बहुत ही विशेष अतिथि हैं कर्नल कंवर भारद्वाज, सेना मेडल से सम्मानित 1971 वॉर वेटरन, और हम उनका स्वागत करना चाहेंगे आज के हमारे इस खास शो में। कर्नल कंवर भारद्वाज जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे शो संदेश टू सोल्जर्स में आकाशवाणी रेनबो पर।
1: बहुत बहुत धन्यवाद आपका
0: सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपने अपना समय निकाला और आज आप हमारे शो में शामिल हुए हैं। हम अपने लिसनर्स को बता दें कि आप हमारा शो लाइव सुन सकते हैं हमारी मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR के माध्यम से दुनिया भर में, और आप हमें मैसेज करके कर्नल कंवर भारद्वाज से सवाल कर सकते हैं, कुछ बात करना चाहे तो आप पूछ सकते हैं हमारे व्हाट्सएप नंबर 9868107070 पर। और हमारे साथ आज के बहुत ही विशेष अतिथि जिन्होंने देश को, देश की सेवा में दो पीढ़ियों से ज्यादा की सर्विस दी है डिफेंस सर्विसेज में। कमीशन किए गए कर्नल कंवर भारद्वाज इंडियन आर्मी में 11 जून 1967 को राजपुताना राइफल्स इन्फेंट्री में। 1971 वॉर वेटरन हैं कर्नल कंवर भारद्वाज। 1971 वॉर में उन्होंने कंपनी कमांडर के तौर पर लड़ाई लड़ी, उसके बाद उन्होंने अपने करियर में कभी पीछे मुड़ करके नहीं देखा, और किस तरह से शुरुआत हुई वो भी अपने आप में बहुत इंटरेस्टिंग है। हम बातचीत शुरू करते हैं हमारे आज के खास मेहमान कर्नल कंवर भारद्वाज से। सर, हम जानना चाहेंगे कि किस तरह से हुई शुरुआत आपका, या परिवार में कोई बैकग्राउंड नहीं था आर्मी से, आप किस तरह से जुड़े, कैसे वो जज्बा आपके दिल में आया?
1: मैं अपने बारे में बताने से साथ ये मैं कहूँगा कि मैं एक बहुत ही जमींदार फैमिली का तीसरे नंबर का बेटा था
0: जी,
1: और मेरे पिताजी जो थे वो एक फार्मर थे, और उसमें जो मैंने मैट्रिकुलेशन किया वो एक गवर्नमेंट स्कूल से पढ़ करके
0: okay.
1: और आर्मी ज्वाइन की एज ए जॉन।
0: अच्छा।
1: और टेक्निकल रेजिमेंट सिग्नल्स के अंदर
0: जी.
1: मेरा इंट्री हुआ व्हेन मेरी उम्र केवल 17 साल 216 दिन की थी।
0: अच्छा।
1: और उस समय हम सिग्नल्स के अंदर रिक्रूट भर्ती किए गए थे
0: जी,
1: और वहां भर्ती होने के बाद में ट्रेनिंग वगैरह खत्म किया, और उसके बाद में हम जालंधर पोस्टिंग हो गए एज ए जॉन।
0: अच्छा।
1: ये फौज के बारे में मोटिवेशन इतना कुछ नहीं था
0: जी.
1: एक जमींदार फैमिली से
0: जी.
1: होने के नाते कॉलेज से भागकर,
0: अच्छा,
1: फर्स्ट ईयर कॉलेज से भागकर हम आर्मी के अंदर ज्वाइन किया
0: जी.
1: और अपना मोटिवेशन यही था कि हम आर्मी के अंदर
0: जी.
1: किस प्रकार से नौकरी करें
0: जी। सर, आप एक जमींदार, एक किसान परिवार से आते हैं, आपके पिताजी किसान थे, तो आपका किस तरीके से वो परिवेश रहा?

0: और अचानक फिर ऐसे आपके दिल में जो जज्बा आया फौज ज्वाइन करने के लिए, फौज में भर्ती होने के लिए, तो ये कहाँ से मोटिवेशन, जैसे आपने बताया कि हमने
1: ये
0: इस तरह
1: बहुत
0: शुरू
1: ही एक अजीब सी बात है कि
0: जी
1: ऐसा कुछ नहीं था कि मैं इतनी जल्दी नौकरी करूं।
0: अच्छा
1: बट जब मैं 10वीं क्लास में पढ़ी रहा था गवर्नमेंट स्कूल गढ़िया शुरू में,
0: जी
1: उस समय मेरा इंगेजमेंट हो गया
0: अच्छा
1: और इंगेजमेंट से डर के शादी नहीं करें अभी, और
0: अच्छा
1: कॉलेज से भाग करके और बगैर बताए पेरेंट्स को हमने आर्मी ज्वाइन कर ली।
0: अरे वाह
1: और आर्मी ज्वाइन करने के बाद जब पता पड़ा हमारे पिताजी को कि
0: जी, तो
1: हम
0: बहुत
1: फौज
0: नाराज
1: में जा
0: होंगे
1: रहे हैं, तो पूरा परिवार बहुत नाराज था।
0: जी
1: और पिताजी ने आकर के काफी कुछ कोशिश की, क्योंकि जो मेरी वाइफ जो शिक्षा भारद्वाज
0: जी
1: जो अभी नहीं है,
0: जी
1: वो उनके ताऊ जी वहां पे हेड क्लर्क पोस्टेड थे
0: अच्छा
1: सोल्जर बोर्ड में। और गुड़गांव में जब मैं भर्ती हुआ
0: जी
1: तो मेरे फादर जो है वो उनके ताऊ जी के पास पहुंच गए और मेरी कंप्लेंट की कि भर्ती होके जा रहा है, इसकी शादी वगैरह अरेंज कर रहे थे तो इसको रोको। तो मैंने
0: अच्छा
1: बड़े रौब से बगैर ज्यादा कुछ बोलते हुए अपने
0: जी
1: फादर का बहुत रिस्पेक्ट करता था और
0: जी
1: गर्दन नीचे करके और अपने जो वुड बी फादर इन लॉ को भी ये बोल दिया कि जी फौज में जाना मेरे को अच्छा लगता है, आई वॉन्ट टू गो एंड ज्वाइन द आर्मी ओनली।
0: जी तो
1: तो
0: आप
1: मैं
0: डिटरमिंड रहे, आप मजबूत रहे कि मुझे तो आर्मी ज्वाइन करनी ही है।
1: एक्चुअली ये था कि 10th करके अगर कॉलेज में आगे नहीं पढ़ना है
0: जी
1: और जोश था कि आर्मी ज्वाइन करें, क्योंकि
0: जी
1: आर्मी उस टाइम पे नंबर 1 प्रोफेशन होता था आज के जमाने को ना कहते हुए।
0: जी
1: एंड आई हैड द इंसिस्टिंग टू माई सेल्फ इन दैट फीलिंग कि
0: जी
1: इससे बढ़िया नौकरी कुछ नहीं हो सकती।
0: अच्छा सर, वो कौन सा साल था जब आपने ज्वाइन किया?
1: इट वॉज 1961
0: 61
1: या एंड आई वॉज पोस्टेड रादर फर्स्ट ट्रेनिंग सेंटर जबलपुर, और
0: अच्छा
1: वहां पे इतना ज्यादा तगड़ा हुआ। और
0: अच्छा
1: जो मेरे वुड बी फादर इन लॉ थे उसने जाते समय वार्निंग दे दी थी कि अगर जा ही रहे हो बगैर हमारे बताए
0: मर्जी के
1: मौजी के
0: जी
1: तो वहां जाकर के फिर ये मत बोलना कि आप हमारा नाम कटवा
0: अच्छा
1: दो।
0: अच्छा अच्छा मतलब ऐसे नहीं कि आप पीछे हट जाएं
1: और जिस काम से मैं भागा था,
0: जी
1: जिससे शादी ना करने के डिले करने
0: जी
1: की शादी से भागा था, जब मैं रिक्रूट ही ट्रेनिंग कर रहा था
0: जी
1: तो मेरे को 10 दिन की छुट्टी बुला करके और मेरी शादी भी हो गई
0: अच्छा
1: व्हेन शी वॉज 14 ईयर्स एंड आई वॉज 18 ईयर्स ओनली,
0: ओके
1: बिकॉज आई ज्वाइन द आर्मी वेन माई एज वॉज ओनली 17 ईयर 216 डेज।
0: अच्छा आप पूरे 18 की भी तब तक नहीं हुए थे,
1: जी
0: और आपने अपनी सर्विस जो है नेशन के लिए, आर्मी के लिए, फोर्स के लिए देना शुरू कर दिया था
1: जी
0: जी। तो सर शुरुआत किस तरह से हुई? आप इन्फेंट्री में रहे, राजपूताना राइफल्स में रहे, तो यही शुरुआत थी? इससे पहले भी आपने किसी और जगह भी काम किया आर्मी में?
1: एक्चुअली जब सिग्नल्स के अंदर हम
0: सिग्नल्स में
1: जवान थे
0: जी
1: तो वहां हमारी पोस्टिंग हो गई ट्रेनिंग वगैरह खत्म करने के बाद में
0: अच्छा
1: जालंधर,
0: ठीक है
1: जालंधर 11 कोर सिग्नल रेजिमेंट, उसके अंदर पोस्टिंग हो गई।
0: जी
1: एंड व्हेन आई वाज देयर 1962 का चाइना के साथ वार
0: अच्छा
1: हुआ,
0: जी
1: सो
0: जी
1: दैट टाइम हम जवान थे
0: अच्छा
1: तो पूरी रेजिमेंट के अंदर काफी
0: जी
1: तहलका मचा हो रहा था और हम एक बहुत ही आउटस्टैंडिंग जवान बन गए थे वहां पे। और 62 का ऑपरेशन के बाद में
0: जी
1: इमरजेंसी कमीशन स्टार्ट हुआ,
0: अच्छा
1: तो इमरजेंसी कमीशन के दौरान
0: जी
1: मेरे को स्पेशली एक अच्छा जवान सिलेक्ट करके
0: अच्छा
1: और कमांडिंग ऑफिसर के साथ में कुछ एक कैंडिडेट से जिनका
0: जी
1: इंटरव्यू कैंडिडेट करके और कर्नल साहब को जो हमारे सीओ थे उस समय
0: जी
1: उनको स्क्रीन आउट करना था कि इनको हम आगे एसएसबी के लिए रिकमेंड करें।
0: अच्छा
1: सो वो बड़ा एक अच्छा इंसिडेंट है विच यू वुड लाइक टू नो
0: जरूर सर जरूर, हमारे
1: कि
0: लिसनर्स
1: मेरे को ये ड्यूटी दी गई कि सबको बारी बारी कमांडिंग ऑफिसर साहब के अंदर ऑफिस में
0: ऑफिस
1: भेजते
0: में भेजा
1: रहिए
0: जाए
1: और इनके
0: जी
1: डॉक्यूमेंट वगैरह चेक करके एंड डू दैट फुल।
0: जी
1: सो सीओ साहब 1:30 बजे लंच ब्रेक के लिए घर चले गए और जाते समय बोल गए कि मैं 3 बजे वापस आऊंगा और 3 बजे के बाद में बाकी कैंडिडेट्स का हम इंटरव्यू करेंगे।
0: अच्छा
1: 3 बजे वो सही डॉट 3 वापस आ गए तो
0: जी
1: फर्स्ट कैंडिडेट को हमने बोला कि आप अंदर जाइए, तो वो अंदर गए तो उन्होंने जाते ही अंदर जाते ही बोला गुड मॉर्निंग सर।
0: अच्छा
1: तो सीओ आस्क्ड हिम कि व्हाट इज द टाइम, 3:05 सर,
0: अच्छा
1: तो व्हाई आर यू सी मी गुड मॉर्निंग सर, तो ही सेड के सर वी हैव बीन टोल्ड इन द सिविल इफ यू मीट समबडी फॉर द फर्स्ट टाइम यू मस्ट
0: अच्छा
1: विश हिम गुड मॉर्निंग। बोलता इफ देर इज एनी हार्म इफ यू विश मी गुड आफ्टरनून और गुड इवनिंग,
0: जी
1: बट सर वी हैव बीन टोल्ड द सिविल लाइक दैट।

0: He put up some other question to him also.
1: जी
0: So he was not able to reply it properly. Then he called for me.
1: जी
0: I in turn saluted him and he put up all those question to me and straight away जो ही वो जैसे सवाल सारे मैं फटाफट जवाब दिया
1: जी,
0: तो कर्नल साहब ने मेरे को तो चेयर ऑफर कर दिया और उसको बोला थैंक यू
1: अच्छा
0: कैरी ऑन
1: और आपको
0: एंड ही इंसिस्टेड मी और रादर मोटिवेटेड मी यू ट्राई फॉर कमीशन व्हाई डोंट यू ट्राई फॉर कमीशन आई सेड सर आई एम नॉट ग्रेजुएट आई एम मेट्रिकुलेट ओनली आई एम नॉट फुलफिलिंग द कंडीशन टू अप्लाई फॉर द इमरजेंसी
1: क्राइटेरिया
0: एंड ही टोल्ड मी दैट ओके क्राइटेरिया नहीं है अभी तो आप ACC अप्लाई करिए यू अप्लाई फॉर आर्मी कैडेट कॉलेज एंड आई सी दैट यू गेट सिलेक्टेड एंड माइंड यू आफ्टर दैट आई नेवर लुक बैक देयर वाज 63 कैंडिडेट फ्रॉम माय रेजिमेंट दोज हु अपीयर्ड फॉर इनिशियल आर्मी कैडेट कॉलेज ऑल द टेस्ट एंड ऑल दैट आई वॉज द फर्स्ट वन टू गेट सिलेक्टेड आउट ऑफ 3 कैंडिडेट आउट ऑफ 63 जो के

0: I never looked back. Achha. There were 63 candidates from my regiment, those who appeared for initial Army Cadet College.
1: Ji.
0: All the tests and all that. I was the first one to get selected out of three Achha. Candidates out 63 of 63, jo ke SSB tak pahunche.
1: तो ये मोटिवेशन सर आपको
0: ये मोटिवेशन मोटिवेशन दैट वे आई गॉट मोटिवेटेड एंड आफ्टर दैट आई नेवर लुक बैक आई हैड वेरी गुड कैरियर थ्रू आउट माय आर्मी कैडेट कॉलेज देन आईएमए एंड व्हेन आई पास्ड आउट फ्रॉम देयर यू आस्क्ड मी दैट हाउ यू गॉट इनटू इन्फेंट्री दैट टू राजपूत राइफल सो ऑन दैट आई जस्ट टेल यू कि वहां पे जो मेरे कंपनी कमांडर थे
1: जी
0: आईएमए के अंदर
1: जी
0: वो राजपूत राइफल से मेजर शर्मा साहब थे अच्छा. जो कि वार वेटरन थे और वीआरसी डेकोरेटेड थे
1: अच्छा
0: सो आई वाज वेरी आउटस्टैंडिंग माइंड यू आई मस्ट बी प्राउड ऑफ टेलिंग यू ऑल्सो
1: बिल्कुल
0: आई हैव प्लेड वॉलीबॉल नेशनल लेवल
1: एंड
0: बास्केटबॉल स्टेप डाउन एंड आई वाज गुड बॉक्सर एंड क्रॉस कंट्री रनर ऑफ द टॉप क्लास इन एकेडमी
1: वॉलीबॉल बॉक्सिंग और रनिंग क्या बात है
0: एंड वॉलीबॉल नेशनल लेवल इज समथिंग वेरी
1: वॉलीबॉल
0: सो He was so impressed and he wanted me to go to his regiment only.
1: Achha.
0: And that's why, whereas my CO, that time who got me selected for ACC,
1: ji,
0: he
1: ji.
0: Wanted me that I should join Signals. But Achha. I got into Rajput Rifles and I was my mighty happy to be with the Rajput Rifles.
1: So sir, aapko zyada maza kis mein aaya? Matlab aapko lagta hai ki Rajput Rifles hi aapke liye jo hai ek dream tha?
0: Dekhiye, aisa main bataye, ki army join karna as a matter of pride.
1: Bilkul.
0: And to become an army officer is a double matter of pride. And if you get into infantry,
1: Ji.
0: Nothing like that.
1: Achha.
0: And among infantry, Rajputana Rifles
1: top.
0: Is a top.
1: Achha.
0: And I was very proud of this. That, oh, I got into Rajputana Rifles.
1: Kya baat hai, sir?
0: You know, my elder son is also from Rajputana Rifles.
1: Yes, sir.
0: And
1: Ji.
0: That boy also, because Rajputana Rifles is one of the very good regiment.
1: Ji.
0: And he is the one.
1: जी क्या बात है सर हम आगे सर आपसे बात करेंगे और हम 62 जैसे आपने बताया हम 71 की बात करेंगे क्योंकि आप वॉर वेटरन रहे 1971 वॉर के तो हम उस पर भी बात करेंगे और कुछ आपसे इंटरेस्टिंग कहानियां भी जानना चाहेंगे तो आगे बढ़ेंगे हम और अपने लिस्टनर से बताना चाहेंगे आप हमें मैसेज कर सकते हैं 9868107070 है हमारा व्हाट्सएप नंबर जिस पर आप हमारे आज के हमारे खास मेहमान कर्नल कंवर भारद्वाज जो सेना मेडल सम्मानित हैं और 1971 वॉर वेटरन हैं उनसे आप सवाल कर सकते हैं अपनी बात कर सकते हैं और हमें आप सुन सकते हैं हमारी मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR पर आप बने रहे हमारे साथ यह है देश का नंबर वन रेडियो आपका अपना रेनबो प्रोग्राम संदेश टू सोल्जर्स आप सुन रहे हैं शाहिद के साथ

0: 102.6 यह देश का नंबर वन रेडियो, आपका अपना रेनबो प्रोग्राम संदेश टू सोल्जर्स आप सुन रहे हैं मेरे साथ, मेरा नाम है शाहिद और आज हमारे हैं खास मेहमान कर्नल कंवर भारद्वाज, सेना मेडल से सम्मानित 1971 वॉर वेटरन। सर, एक बार फिर से मैं स्वागत करना चाहूंगा आज के हमारे इस शो में।
1: वेलकम, थैंक यू सो मच।
0: थैंक यू सर, आपने अपना समय दिया आज हमारे साथ। आप जो बहुत ही इंटरेस्टिंग बातें हमें बता रहे हैं वो हमारे लिए बहुत ही अनोखी भी हैं और बहुत ही खुशी देने वाली भी हैं। जिस तरीके से आपने बताया कि आपने बचपन से ही किस तरीके से आपके मन में था कि आपको फौज में भर्ती होना है और आपने किसी की परवाह नहीं की और आपने वो मकाम बनाया जो हर इंसान के लिए, सर मैं समझता हूँ कि आसान नहीं होता, जाहिर है बिना मेहनत के फल नहीं मिलता, तो वही आपने अपनी लाइफ में वो किया, अपने करियर में आपने जो अचीवमेंट्स हासिल की, वो जो मकाम आपने बनाया, तो इसके बारे में आपके कुछ, सर कुछ शब्द मैं चाहूंगा कि आप कहना चाहेंगे अपनी अचीवमेंट्स के बारे में, आप क्या सोचते हैं, क्या कहते हैं?
1: आई थिंक ऊपर वाले ने जो दिया है
0: जी,
1: जितना हम एक्सपेक्ट करते थे उससे भी बहुत अच्छा मिला है। और जो 71 वॉर के बारे में
0: जी,
1: मेरा इतना अच्छा एक्सपीरियंस है कि मैं बड़ा यंग ऑफिसर था एंड आई वाज मेजर रैंक था मेरे पास में
0: जी,
1: आई वाज कमांडिंग वन ऑफ द कंपनी ऑफ 9th बटालियन राजपूत राइफल
0: जी
1: इन पुंछ सेक्टर,
0: पुंछ सेक्टर में जी। तो सर 1971 वॉर वेटरन हैं आप, तो उसके सर हम उस वॉर के बारे में जानना चाहेंगे जिसका आप हिस्सा रहे हैं, तो वो किस तरीके का सर दौर था, वो क्या हालात थे और जब वो जंग थी तो उस पर आपका और जो जो नेशन उस वक्त जो देश पर में चल रहा था उसके बारे में कुछ कहना चाहेंगे?
1: देखिए उस समय जो हालात थी
0: जी,
1: वो मुक्ति वाहिनी वगैरह बहुत पहले से मूवमेंट शुरू हो चुके थे
0: जी
1: ईस्टर्न सेक्टर में, बट नॉर्दर्न सेक्टर के अंदर पुंछ एरिया स्पेशली उस साइड के अंदर कोई ज्यादा इतनी चहल पहल नहीं थी, लड़ाई की तैयारियां नहीं थी। लेकिन लकली वी हैड ए जनरल ड्यू कमांडर मेजर जनरल कुंदन सिंह
0: जी,
1: ही वाज आल्सो फ्रॉम राजपूत राइफल्स एंड ही हैपन टू बी वन ऑफ द आउटस्टैंडिंग जनरल हु रिटायर्ड एज एमएस लेफ्टिनेंट जनरल।

0: was the one who pulled up the complete division, and we were prepared for any eventuality or any war type thing at that time. So he was the one, and I was with the Bravo Company commander in Punch sector, where Punch is other side of the Punch River, and we were the other side of the this side of the Punch River, and other side
1: of the
0: हम इस साइड में थे
1: अच्छा
0: और पुंछ के थोड़ा सा आगे चलने के बाद में पाकिस्तान बॉर्डर स्टार्ट होता है एंड आई वाज फेसिंग द पाकिस्तानीज अपोजिट माय पोस्ट अक्रॉस द रिवर पुंछ रिवर
1: मतलब आमने सामने की
0: आमने सामने थे
1: बिल्कुल
0: और उनके पास में वहां पे आरसीएल गन लगी हुई थी और एमएमजी लगी हुई थी वो डायरेक्टली हमारे अंडर व्यू थी दे कुड फायर एट अस एंड वी कुड फायर एट देम
1: अच्छा बिल्कुल आमने सामने
0: आमने सामने फ्रॉम दैट टॉप एंड आई हैड You know, company was deployed on three posts.
1: Achha.
0: And I was on the middle post. From middle post, जो पहाड़ी का था उससे हम पूरी कंपनी को अपना कंट्रोल करते थे और सामने से फायर वगैरह आते थे चार तारीख दिसंबर 4th of December फायरिंग स्टार्ट हो गया तो फायरिंग स्टार्ट होने के बाद में पूरी रात हम लगभग लड़ाई लड़ते रहे और जो ही फायरिंग स्टार्ट हुआ तो माई एक्शन वॉज कि मैंने पूरे जवानों से मिलकर उनको हौसला बढ़ाना है एंड ड्यूरिंग दैट टाइम ओनली व्हेन द फायरिंग वाज गोइंग ऑन आई नेवर बॉदर्ड फर्स्ट आई वेंट टू अदर पहाड़ी अदर जो कि जमीर पिकेट थी ऑलमोस्ट अबाउट किलोमीटर अदर साइड ऑन द अपहिल ऑफ द माउंटेन एंड आई मेट ऑल द पर्सन एंड जवानों का हौसला बढ़ाते देन आई वेंट टू द अदर पिकेट And then to my own picket. And complete night I was active with that meeting the people.
1: Ye movement aapki puri raat rahi.
0: Puri raat rahi. And when I
1: wait karte rahe, when I,
0: you know, we have the command post.
1: Achha.
0: And command post is sort of a very, very solid bunker.
1: Bilkul.
0: From where you could observe and then direct the firing and other things also and command your company also.
1: Bilkul.
0: So from the command post, early in the morning, it was going to be daylight. I got out from my command post and was going for a pee place, to a toilet. And the toilet was, you know, all temporary.
1: जी बिल्कुल
0: टिन से टिन के ना टार्मिक के टिन होते हैं ड्रम उसको कट करके एक बड़े से पत्थर के साथ में
1: उसको बनाया जाता है
0: बनाया गया
1: ठीक है
0: टेम्परेरी टाइप
1: जी
0: सो आई वॉज गोइंग टू दैट वन सो यू नो बंकर टू बंकर और वी हैव द कम्युनिकेशन ट्रेंचेस Communication trenches are the, you know, sort of say about 5.5 to 6 feet deep.
1: Achha.
0: Now through which you can walk.
1: उसके बीच में से आपको गुजर के जाना होता है.
0: चल के जाना होता है.
1: जी.
0: So when I was walking to toilet, and then climb up and get out from that one.
1: जी.
0: That time, there was a sound of a RCL fire.
1: अच्छा.
0: When the RCL fire came, तो my operator was with me.
1: जी.
0: And he was coming out with me कि मेजर साहब कहाँ जा रहे हैं तो वो मेरे साथ जो ही निकला उसने सुना कि अब फायर हो गया आरसीएल और इसने मेरा हाथ पकड़ के और पीछे गिरा दिया
1: अच्छा
0: और बोला अरे सब मरोगे एंड इन द मीन टाइम द आरसीएल बम हिट दैट टॉयलेट वॉज इट वॉज थ्रोन अप इन पीसेज एंड द बिग द रॉक ओवर देयर इट वॉज ऑल ब्लोन अप एंड वी वर Really in danger, and it was a good luck of mine.
1: कुछ seconds thank कहीं सिर्फ
0: yes
1: आप मतलब वो जो
0: actually
1: होने वाला था
0: it would have been entirely different thing. I would have been pieces, not sitting in front of you today.
1: बिल्कुल.
0: So that was the one. Then what happened next day early afternoon? We got a order that you have to move out to another battalion. That is Banwar sector. And defend a company of other Chesik, which was in danger, which was attacked that night.
1: Achha,
0: next night they were to be attacked.
1: Ji.
0: So that one of the FDL behind that is numbered, FDLs were numbered at 405, 406.
1: Achha.
0: So 406 was in danger. It was encircled by the enemy.
1: Achha.
0: So I was told that your company will go and reinforce that.
1: Reinforce.
0: 405 picket so that you we could fight back the enemies. So I moved my company before last light to the that side towards Punch. We had to go across the Punch River.

0: Then Punch township is there,
1: जी
0: pass through that place, and they climb up almost about 2,000 square feet, I say.
1: जी
0: And the brigade headquarter was at the Punch River,
1: अच्छा
0: Punch headquarter, the brigade one.
1: जी जी
0: So there was a झूला bridge which was to be crossed
1: अच्छा जो
0: by
1: जो
0: we
1: बीच
0: people.
1: में
0: The
1: दरिया होता है उसको
0: झूला bridge on Punch was the
1: अच्छा
0: one which was a wooden type, and only it was only for two wheelers
1: अच्छा
0: or
1: या फिर पैदल
0: पेमेंट
1: चल के जाने के
0: पैदल
1: लिए
0: चल के जाने के लिए.
1: जी जी
0: सो आई वॉज कॉल्ड बाई द बटालियन कमांडर फॉर द ब्रीफिंग. सो विद माई स्कॉट टू स्कॉट एंड ऑपरेटर्स
1: जी
0: वी वेंट टू द बटालियन कमांडर एंड ही ब्रीफ मी दैट यू हैव टू गो एंड डू दिस वर्क. 6-6 वॉज द बटालियन विच वॉज डिप्लॉयड दैट साइड एट 405 406, एंड यू हैव टू गो एंड क्लियर द सैडल बिटवीन ब्लैक रॉक बिटवीन दीज टू FDLs.
1: अच्छा
0: ठीक है. एंड
1: जी
0: देन ज्वाइन द कंपनी विच इज फाइटिंग विच इज लाइकली टू फाइट दिस नाइट और नेक्स्ट
1: क्योंकि जैसे
0: डे.
1: आपने बताया कि उधर से अटैक हो
0: उधर
1: चुका था और
0: जाके, हाँ जी, उनको जाके आपने रीइन्फोर्स करना है.
1: रिइंफोर्स करना है।
0: सो आफ्टर ब्रीफिंग आई हैड टू आई गॉट ए आरसीएल जीप.
1: अच्छा
0: आई विद माई स्कॉट एंड ऑल दैट गॉट इन टू आरसीएल जीप वाइल मूविंग डाउन टूवर्ड्स दैट ब्रिज.
1: अच्छा
0: द ट्रैफिक वॉज टू मच बिकॉज दैट टाइम द ऑल कानवाइज लोडेड विद द अमुनिशन ऑल दैट आर्टिलरी
1: अच्छा अच्छा अच्छा
0: कानवाइज
1: जी
0: दोज
1: जी
0: वर द ऑल लाइंड अप ऑन द रोड एंड माई जीप वॉज नॉट एबल टू गेट थ्रू. सो आई गॉट ऑन माई फीट
1: अच्छा आप पैदल
0: विद
1: चल
0: माई
1: करके गए
0: स्कॉट एंड ऑल दैट
1: अच्छा
0: एंड आई वेंट अराउंड से 3 to 5 किलोमीटर वॉकिंग. वेन आई रीच टू द झूला ब्रिज
1: जी
0: आई फाउंड माई कंपनी वॉज स्टक अप देयर. दे वर ऑल इन पोजिशन एंड फायरिंग वॉज गोइंग ऑन फ्रॉम बोथ द साइड्स.
1: अच्छा जिस वक्त आप पहुंचे उस वक्त भी ये सब फायरिंग
0: मेरी जो कंपनी थी वो
1: जी
0: पुंछ रिवर के इस तरफ झूला ब्रिज के इस तरफ
1: और झूले के उस तरफ
0: अदर
1: झूला
0: साइड इज द
1: ब्रिज के उस
0: पुंछ
1: तरफ जी
0: पुंछ के परली तरफ से भी फायर आ रहा था और इधर से ये लोग भी फायर कर रहे थे. सो आई हैड टू रादर टू सबाल्टर्न टू यंग ऑफिसर
1: अच्छा
0: लेफ्टिनेंट वार्डने एंड लेफ्टिनेंट मल्होत्रा
1: जी
0: एंड जेसीओज वर देयर. कंपनी जेसीओ से मैंने पूछा कि रंजीत साहब कोई फायर क्यों हो रहा है.
1: जी
0: रंजीत साहब ये फायर क्यों हो रहा है.
1: जी
0: तो उन्होंने बताया सर उधर सामने से फायर आ रहा है. मैं क्या फायर क्यों किया. बोल सर ऐसा है झूला ब्रिज के ऊपर से 3-4 लोग आए थे
1: अच्छा
0: और जब वो आने लगे उतर रहे थे तो
1: जी
0: हमने उनको चैलेंज किया तो उन्होंने पासवर्ड नहीं दिया और वो भागने लगे. तो भागने से लगे तो हमारे जवान ने फायर कर दिया. मैंने बोला तुम्हारे को बताया था ऐसे तो हरकत नहीं करना वहां जाके कंपनी को पोजीशन दे देना मैं आके ज्वाइन करूंगा आपको.
1: ठीक
0: तुमने फायर क्यों खोला. बोले सर हमने सोचा एनिमी है तो जवानों ने फायर खोल दिया. मैं ऑर्डर किसने दिया. बोले साहब मैंने दिया था. मैं चलो कोई बात नहीं है. देन आई कॉन्टेक्टेड द ब्रिगेड BM.
1: अच्छा
0: आई सेड माई कंपनी टू क्रॉस झूला ब्रिज एंड गो टू बनवट सेक्टर टू हेल्प आउट सेसिक एंड हु इज फायरिंग फ्रॉम अदर साइड. देर वॉज 80 कंपनी एटी कंपनी
1: अच्छा
0: दोज आर यू नो विद एनिमल्स म्यूज एंड ऑल दैट. दे थॉट के देर इज एनिमी टू अदर साइड
1: अच्छा
0: एंड दे आर फायरिंग टूअर्ड्स अस एंड वी आर फायरिंग दैट साइड.
1: जी सर
0: सो
1: मैं एक चीज यहां पर जानना चाहूंगा जब ये सिचुएशन आप देख रहे थे अपने सामने तो वो क्या फीलिंग्स होती हैं आप फायरिंग के बीच में जब जा रहे हैं दोनों तरफ से फायरिंग हो रही है और वो वॉर का समय है तो क्या वो जो सिचुएशन होती है उसको किस तरह से फेस करते
0: वेल
1: हैं
0: जो
1: महसूस
0: फीलिंग
1: करते
0: होती
1: हैं
0: है वो जो फीलिंग होती है
1: जी
0: वो बियॉन्ड एक्सप्लेनेशन है. हम तो इतने जोश में होते हैं कि कुछ हमको लगता ही नहीं है. हम तो को पता है हम
1: जी
0: जीतेंगे हम मारेंगे हम अपने जो भी हमको ऑब्जेक्टिव मिला है जो टास्क मिला है उसको पूरा करेंगे. अभी
1: जी
0: बताता हूँ आगे क्या क्या
1: जी
0: हुआ.
1: जी
0: तो BM साहब ने बोला और 80 वाले मैं उनको बोलता हूँ
1: जी
0: कि आप अपना कंपनी को लेके क्रॉस करिए
1: जी
0: और आप पहुंचिए जल्दी से. सो यू नो क्लाइम वॉज क्वाइट बिग. वेन द फायरिंग स्टॉप
1: अच्छा
0: आई मूव माई कंपनी क्रॉस द झूला ब्रिज देन स्टार्ट क्लाइंबिंग अप. सो क्लाइंबिंग अप ऑल दैट तो वॉज दैट मल्होत्रा प्लाटून वॉज लीडिंग एंड वेज वी कम इन सिंगल लाइन.
1: अच्छा
0: ट्रैक के ऊपर जैसे पहाड़ों के चढ़ते हैं
1: जी
0: तो सिंगल लाइन पे जा रहे थे. एवरीबडी वॉज टायर्ड एंड इट वॉज गोइंग टू बी अर्ली मॉर्निंग बट
1: अच्छा
0: बिफोर फर्स्ट लाइट आई वॉज टू
1: तो
0: रीच
1: पूरी रात को आपको चढ़ाई चढ़नी थी
0: बिफोर फर्स्ट लाइट आई वॉज
1: जी
0: टू डू द ऑपरेशन ऑल्सो. दैट वॉज माई टास्क
1: यानी कि
0: बिकॉज
1: आप
0: इफ इट वॉज द
1: जी
0: डे लाइट देन आई वुड बी एबल टू डू द नीडफुल.
1: बिल्कुल तो इतनी टफ
0: सो
1: क्लाइंबिंग के बाद आपको ऑपरेशन भी अपना शुरू करना है
0: कंप्लीट करना था.
1: बिल्कुल
0: सो वेन वी आर नियर

0: that objective
1: जी
0: before I mean the 405.
1: जी
0: The 405 was the headquarter of CSIC, and the CEO was there.
1: अच्छा
0: and went, all those people those were the 10 men जो control करते हैं. तो मेरे को उनको जाके ब्रीफिंग लेना था. उनसे ब्रीफिंग लेने के बाद मेरे को ऑपरेशन करना था. सो टाइम वॉज रनिंग शॉर्ट. तो व्हेन आई फाउंड के आगे से वो बैठ गए सारे
1: जी.
0: तो मैंने जाके जवानों से पूछा क्या हुआ. मुल साहब मल्होत्रा साहब आगे बैठ गए. आई कॉट ऑल ऑफ मल्होत्रा फ्रॉम हिज नेक एंड आई टोल्ड हिम व्हाट इज रॉन्ग विद यू व्हाई यू स्टॉप्ड. मुझे से टायर्ड मैं कहा यू गेट बैक एंड आई वॉज द वन टू लीड द कंपनी रीच टू द 405 FDL
1: जी.
0: एंड आई मेट द सीओ. सीओ ब्रीफ्ड मी. I requested CEO, okay, sir, give me two escort, those who can tell me okay, where, from where the fire is coming,
1: जी.
0: So that my jawans can attack that one and I don't suffer casualties.
1: जी.
0: So when he told me that, okay, Major Swain is the company commander जी. And you take two jawans from him, they will tell you okay, from where the fire is coming. So when I went to him, Major Swain said, no, I am already under the attack and I will not be able to give anything. So I walked back to commanding officer
1: जी.
0: Of CSIC and I said, sir, your company commander is not giving me escort. Then he said, the task is given to you. Make a well, Colonel so-and-so, you are talking to the company commander of 9th Battalion Bravo Company. And I'll see that my task is completed before the first light and I'm going. So his adjutant came running with me.
1: Achha.
0: And he asked that Major Swain to give me escort. And I put up an attack sort of thing, I should say.
1: Ji.
0: We had to go down. We had to go down in the, what do you call, valley.
1: Achha.
0: And climb up again. And then there was a black rock. From there, the MMG and LMG of Pakistan, they were firing. There were a number of mules, those were killed, and one of the casualty was there. Other people were also injured in that valley.
1: Ji.
0: But before the first light, I was able to climb up. And that the enemy left his that location,
1: Achha,
0: leaving some ammunition in one
1: Ji.
0: Of the...
1: They
0: ran away from there.
1: Ji.
0: And I joined Major Punjab and Major Padda over there. And there were 36 Pakistanis, those were killed by that company that night itself.
1: Mm.
0: So next morning, we picked up all those dead bodies of them. I had breakfast, a hot breakfast with the Major Punjab and all.
1: Achha.
0: And then next task was given to me to go to help out other company because I was one of the outstanding company commander and outstanding company in the complete division.
1: Ji.
0: With my young Joes and all that, and I had stood first in one of the competition which was conducted at the Div level, at the Div headquarters at Rajouri, and the Div commander himself has given this praise of mine that Bravo Company commander Major K.S. Kamar Bhardwaj is Ji. One of the outstanding officer in this competition training we had. In the Div Battle School.
1: जी.
0: So that was the reputation sort of that thing.
1: बिल्कुल सर. आपकी आपकी वो जोश और जज्बे से भरा हुआ वो जो मोमेंट रहा उसमें आपने इतना बड़ा उसमें जो है कॉन्ट्रीब्यूशन दिया रोल प्ले किया तो वो वाकई यादगार है और जैसे कि आपने बताया कि वो आपकी यादों में जुड़ा हुआ है हमेशा के लिए और वो आपके कहीं ना कहीं मस्तिष्क में हमेशा के लिए वो जुड़ा हुआ है.
0: अभी आप बात कर रहे हैं अभी वैसा जोश आ रहा है
1: जोश
0: अभी भी मैं उसी लड़ाई उसी पहाड़ और उसी ब्लैक रॉक जिसको मैंने जाके कैप्चर किया और वो अभी भी ऐसा लग रहा है कि सामने अभी से मैं फिर से जवान हो जाऊं.
1: आप उन यादों में पहुंच गए और मैं आपके साथ उन यादों के साथ ही वहां पर पहुंच गया आपकी बातों में. मुझे महसूस हो रहा था कि मैं वहीं आपके साथ पीछे पीछे चल रहा हूं आपकी बातों में और आपकी यादों में जहां आप वॉर फ्रंट पर थे और आप दुश्मन का मुकाबला कर रहे थे.
0: वेरी नाइस टू टॉक ऑन दैट लाइन.
1: जी. और सर इसके बाद भी हम आगे आपसे बढ़ेंगे और हम चाहेंगे कि हम और भी चीजें आपसे जानें जैसे आपने 1971 वॉर की आपने जो इंसिडेंट बताए यादगार कुछ लम्हे आपने शेयर किया हमारे साथ. सर आर्मी सोल्जर्स ने सिर्फ वॉर फ्रंट पर ही नहीं उसके अलावा अलग अलग स्ट्रीम्स में भी स्पोर्ट्स में भी गोल्ड और अदर मेडल्स भी जीते हैं तो आर्मी का कितना बड़ा रोल रहता है वो हर तरह से जैसे कि आपने भी कहा आप नेशनल लेवल चैंपियन भी रहे.

0: वॉलीबॉल के, बॉक्सर भी आप रहे, आप एक बेहतरीन रनर भी थे, तो आर्मी इन सब चीजों में भी आगे रहती है हमेशा, वो वहां भी कीर्तिमान स्थापित करती है।
1: राइट फ्रॉम द डे वन
0: जी
1: फिजिकल साइड हैड बीन माई द बेस्ट
0: जी
1: आई से माई स्ट्रेंथ एंड देन माई मोटिवेशन
0: बिल्कुल,
1: माई
0: फिजिकल
1: एम
0: स्ट्रेंथ
1: एंड
0: एंड
1: डिटर्मिनेशन ऑल दोज थिंग्स. टूडे आई कैन से अगेन दैट आई सेल्फ मेड मैन इज
0: जी
1: इन फ्रंट ऑफ
0: बिल्कुल
1: यू. ठीक
0: बिल्कुल
1: है, फ्रॉम दैट बैकग्राउंड ऑफ ए फार्मर फैमिली एट माई ओन विदाउट एनी सिफारिश और विदाउट एनी रिकमेंडेशन और ब्राइब और एनी थिंग
0: बिल्कुल
1: आई
0: सर
1: वॉज द वन टू डू ऑल दिस थिंग
0: बिल्कुल, आपने
1: एंड
0: बिल्कुल ग्रास रूट लेवल से शुरुआत की और आपने जो अचीवमेंट हासिल करी वो आपकी अपनी अर्न की हुई है, अपनी मेहनत से आपने वो जो एक मकाम हासिल किया।
1: यू विल बी प्राउड टू टेल यू दैट मैंने जब बटालियन में
0: जी
1: कदम रखा
0: जी
1: तो अपने आप को बटालियन में किसी जवान से कम नहीं समझा. मेरे फिजिकल में इतना दम था
0: जी
1: कि जवान भी मेरा मुकाबला नहीं कर सकते, ऑफिसर की तो बात ही छोड़
0: क्या
1: दीजिए.
0: बात है सर,
1: और मैंने जब बटालियन जामनगर आ गई तो उस समय मैंने बटालियन में बॉक्सिंग टीम रेज की, वॉलीबॉल टीम रेज की और वो वॉलीबॉल नेशनल लेवल के प्लेयर बनाए और जो बॉक्सर सेलेक्ट किए थे
0: जी
1: उसमें फर्स्ट टाइम 4 बॉक्सर कमांड लेवल तक बॉक्सिंग किया.
0: क्या बात
1: एंड माई माई क्रॉस कंट्री रनिंग और दे लॉट ऑफ अदर कंपटीशन आई यूज टू कैरी इवन द हैवी लोड ऑफ आरसीएल और
0: अच्छा, आरसी सर बहुत भारी
1: उसको
0: होती
1: कैरी
0: है।
1: करना पड़ता है.
0: अच्छा
1: MMG कैरी करनी पड़ती है, 3 पार्ट्स अलग अलग हो जाते हैं
0: अच्छा उसको फिर
1: तो
0: कंबाइन
1: उसको
0: करके,
1: लेकर
0: अच्छा
1: के हमको 15 किलोमीटर 20 किलोमीटर तो ऐसे लंबी दौड़ें लगानी पड़ती है. सो आई यूज टू बी लीडिंग अमंग द जवान्स ऑल्सो विद ऑल दोट
0: सही,
1: एंड
0: बहुत बड़ी
1: माई
0: बात है
1: माई CO एंड माई TIC एंड माई बटालियन यूज
0: जी।
1: टू कॉल मी रनिंग हॉर्स
0: रनिंग हॉर्स,
1: रनिंग
0: क्या
1: हॉर्स.
0: बात है सर
1: सो दैट वॉज द
0: जी
1: एंड माइंड यू दैट टाइम आई वॉज ऑल्सो मैरिड एंड फादर ऑफ वन डॉटर देन
0: जी
1: देन सन वॉज ऑल्सो बॉर्न देयर ओनली
0: अच्छा
1: जामनगर
0: क्या बात है सर,
1: एंड
0: कर्नल
1: आफ्टर दैट आई हैड गॉन टू द वॉर.
0: जी कर्नल कमर भारद्वाज की बात सुनकर के हम भी जोश से पूरी तरीके से भर गए हैं। और यहां पर मैं जरूर कर्नल कमर भारद्वाज जो सेना मेडल सम्मानित हैं, 1971 वॉर वेटरन हैं, हमारे साथ मौजूद हैं संदेश टू सोल्जर्स में, उनको सर मैं आपको ये गाना डेडिकेट करना चाहता हूं जो आपकी पसंद से मैंने निकाला था। बहुत ही ब्यूटीफुल ट्रैक, घर से निकलते ही आप सुन रहे हैं संदेश टू सोल्जर्स 102.6 देश का नंबर 1 रेडियो, आपके अपने रेनबो पर शाहिद के साथ। आप हमें संदेश टू सोल्जर्स में कर्नल कंवर भारद्वाज से आप बात कर सकते हैं, सवाल कर सकते हैं हमारे व्हाट्सएप नंबर 9868107007 पर, और जो मैसेजेस सर आ चुके हैं मैं उनको आपको पढ़कर सुनाऊंगा इस गाने के बाद।

0: 102.6 देश के नंबर वन रेडियो आपके अपने रेनबो पर प्रोग्राम चल रहा है संदेश टू सोल्जर्स और आज के हमारे खास मेहमान हैं आज के शो में कर्नल कमर भारद्वाज सेना मेडल से सम्मानित वॉर वेटरन हमारे साथ आज मौजूद हैं और हम उनकी कहानी सुनकर के खुद भी जोश से अपने आप को भरपूर महसूस कर रहे हैं। सर यहां पर मैं आपसे जो भी अभी अब तक मैंने बात की आपके बारे में बात की लेकिन सर एक ऐसी एक शहीद की बात भी मैं यहां पर करना चाहूंगा जिन्होंने अपने देश के लिए बलिदान दिया जान की आहुति दी और वो थे कैप्टन उमंग भारद्वाज आपके सुपुत्र जिनको उनके साथी प्यार से टाइगर बुलाया करते थे। तीन सक्सेसफुल ऑपरेशंस उन्होंने किए जिन तीन ऑपरेशंस में उन्होंने 15 ड्रेडेड टेररिस्ट को मार गिराया था। उसके बाद चौथा ऑपरेशन था वो एम्बुश था 18 और 19 नवंबर 2002 की मिडिल नाइट में। उस दौरान सर 6 टेररिस्ट मार गिराए गए जिनमें से 2 को अकेले उमंग भारद्वाज ने ही मौत के घाट उतारा और सर उसी ऑपरेशन के दौरान उन्होंने बलिदान दिया शहीद हुए वो और उनको मरणोपरांत शौर्य चक्र से भी नवाजा गया था। सर वो मोमेंट था एक प्राउड मोमेंट भी था लेकिन बहुत ही यंग एज थी उनकी जब उन्होंने शहादत पाई और टेररिस्ट का मुकाबला करते हुए उनको मार गिराया और अपनी भी जान की आहुति दी देश के लिए। क्या कहना चाहेंगे सर कैसे याद करते हैं आप?
1: ओह माय गॉड कैसे याद करते हैं जैसे उसका नाम था ना उमंग
0: जी
1: ही वाज ऑलवेज ए लाइव वायर आई टेल यू हे मेरे लाइफ का वो इतना चाहता बेटा था
0: जी
1: ही वाज माय बेस्ट फ्रेंड ही वाज माय बेस्ट गाइड ही वाज माय बेस्ट फादर एडवाइजर व्हाट सो यू कॉल बिकॉज इट हैपेंड सो कि वो बड़े भाई से 7 साल छोटा था।
0: अच्छा
1: जो उस समय मेजर थे और एनएसजी में इंस्ट्रक्टर थे मेजर राजेश भारद्वाज
0: जी
1: और सबसे बड़ी सिस्टर जो है उनकी वो डॉक्टर सविता है।
0: अच्छा
1: सो उमंग वाज फुल ऑफ जोश ऑल द टाइम एंड वी नेवर वांटेड टू सेंड हिम टू आर्मी बट ही गॉट सिलेक्टेड इन रिटर्न एंड देन ही वाज टू गो फॉर एसएसबी दैट टाइम ऑल्सो माई सेल्फ और मेरी और उसकी मम्मी शिक्षा भारद्वाज ने काफी कोशिश की कि हम इसको नहीं भेजे बट उसने हमारे को पर्स्यू करके और उस लाइन पे ले आए कि नहीं मेरे को फौज में जाना है और मैं पहले जाता हूँ एसएसबी में अभी हम क्लियर कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे देखते हैं कितना दम है हमारे अंदर। तो वहां एसएसबी में गया एंड ही गॉट सिलेक्टेड बिकॉज पहले तो बोला था मैं ठीक है 5 साल के लेगा जाएंगे तो शॉर्ट सर्विस में चले जाएंगे and he got in merit and he got regular
0: ji
1: to join csd IIM join karke
0: acha
1: to command defense services join ko clear karke
0: ji
1: aur ssb wagera clear karke IIM se pass out ho gaya that time I tried to get him in the asc or aoc
0: acha
1: so that time I went to army headquarters one of the officer over there with my friend I had gone to him and I said ki bhai beta pass ho raha hai to major Hudda was there
0: ji
1: he said ki sir usko hum armored corps to aur mechanized

0: पेन नहीं दे पाएंगे, राजदेव दे देते हैं। आई टोल्ड हिम, मैं कह रहा हूँ मुंह मेरे पे एहसान नहीं कर रहे आप,
1: बिल्कुल
0: ठीक है। तो उसको मैं क्या, हमने राजीव नहीं चाहिए उसको, तो राजीव तो उसका बाप है, उसका भाई है, तो वो तो उसका पेरेंटल हक है, वो तो मिलेगा। बट वी वॉन्ट हेम टू गो टू नेवी, व्हाट यू कॉल, एएससी और एओसी, बिकॉज दैट टाइम देर वॉज सम हिच इन माई माइंड एंड माई वाइफ माइंड कि इसको कहीं खतरा है, पता नहीं क्यों ऐसा ही पहले ही लग रहा था।
1: लेकिन सर उस उन उमंग में आपका वाला ही वो जोश था, अपने पिताजी का वो जोश और जज्बा, इसीलिए उनके साथ उनको टाइगर कहकर पुकारते थे।
0: I am coming to that one, तो उसको when he passed out and when he came to know कि ये मेरे को एसी मिली है
1: जी,
0: तो मैंने वो उसको वो फोन पे बड़ी मुश्किल से बातचीत किया एंड ही वाज क्राइंग ऑन फोन कि डैड मेरे साथ आपने अच्छा नहीं किया, व्हाई यू गॉट मी इन एसी। आई सेड बेटे आपको 3 साल मिलेंगे अटैचमेंट के लिए, उसमें आप हमारी राजीव मेरी पलटन के साथ या भैया की पलटन के साथ में आप अटैचमेंट पे आना, अगर आपको राजीव ही चाहिए तो यू कैन कंटिन्यू विद दैट, अदरवाइज मैं क्या राजीव पे अगर मिल जाती है, इन्फेंट्री मिल जाती है, उससे बाहर निकलना मुश्किल होगा, सो इट विल बी डिफिकल्ट फॉर यू टू गेट आउट फ्रॉम देयर एंड वी वॉन्ट टू यू जज अबाउट यूर सेल्फ। ही सेड नथिंग डूइंग एंड मेरे ऊपर कोई मेहरबानी मत करना भी, जहां मेरी पोस्टिंग आती है मेरे को जाने दीजिए।
1: अच्छा,
0: ही ज्वाइंट 7 जाट एंड 7 जाट के अंदर गया
1: जी,
0: तो ही वॉज पोस्टेड इन महेंडर सेक्टर एंड नाउ कमिंग टू द ऑपरेशन। ही वॉज सच ए जॉली फेलो एंड फुल ऑफ जोस ऑफ द टाइम, ही कंडक्टेड 3 ऑपरेशन विच यू ऑलरेडी टॉक्ड अबाउट, और 3 ऑपरेशन के अंदर उसने 5 मार दिए थे। इसमें एक इंसिडेंट और बताऊंगा, एक डी के शाह उसी कोर्समेट, he was also with the 7 jat and there is a ghatak platoon
1: ji ji,
0: so this boy Umang was doing ghatak platoon commander for 1 year and during that operation he has killed 15 terrorists
1: ji,
0: and these 4 officers, those who joined together 7 jat, they had taken a sort of pledge that jab tak hamari platoon yahan hai aur hum yahan par hain, koi terrorist hamare area se
1: जिंदा नहीं जा सकेगा,
0: जिंदा नहीं जा सकेगा, अंदर घुस नहीं सकेगा,
1: घुस नहीं सकेगा।
0: एंड दैट ही डिड। कैप्टन डी के झा सेक्रीफाइस्ड अबाउट 2.5 मंथ्स अर्लियर दैट इन दैट सेम एरिया एंड उमंग वाज डूइंग एडिडेंट। उमंग टोल्ड मी इन द नाइट अराउंड मिडनाइट, ही टोल्ड मी दैट डैड डी के इज नो मोर। आई से व्हाट द हेल आर यू टॉकिंग, बोलते हुए तो छोड़ो मेरे से ऊपर क्या गुजर रही है, व्हाट उसके ब्रदर है दिल्ली के अंदर एंड हिज बॉडी विल बी कमिंग टू एयरपोर्ट एंड उसके ब्रदर को आपके उसके साथ भेजना पटना एंड नेक्स्ट मॉर्निंग 7:30 आई विल कॉल यू एंड गिव मी रिपोर्ट। दैट वॉज अ सॉर्ट ऑफ ऑर्डर फॉर माई यंगर सन एंड द ब्रेव बॉय एंड नेक्स्ट आई डिड ऑल द थिंग्स बिकॉज ही टोल्ड मी कि उसके पास पैसा नहीं होगा, उसकी टिकट वगैरह कर दीजिए और डेड बॉडी के साथ वो उधर से लेके जाएंगे उसे। सो दैट वॉज डन। देन उमंग का जो बताया ऑपरेशन
1: जी,
0: ही वॉज डूइंग एडजुटेंट फॉर 2 ईयर्स, ही वॉज पोस्टेड आउट, पोस्टिंग आ चुका था, ही केम ऑन 10 डेज लीव एंड 10 डेज लीव के वापस जब वापस गया, सो ही रीच देयर ऑन द 17th evening
1: जी,
0: रादर 18th evening
1: जी, 18th और 18th evening
0: ही रीच देयर
1: जी
0: and he was there to have his farewell parties and all that and pick up a trophy and get out from the battalion doing good job. That time there was some information on news and all that that there are some terrorists those who are crossing the border, so he went to the CO and requested him that I want to go for the operation. So CO told him no, you send somebody, you will not go, you are already posted out and you have to go, that is enough for you. So this boy insisted on him and the third time he got ready, took some people with him and went for the operation himself. Then CO warned him that go up to so and so location and conduct the operation, take care, apna dhyan rakho
1: ji.
0: But this boy full of josh and when he went with the ambush party as a ambush commander
1: जी.
0: He put the ambush over there and allowed the 6 terrorists to get into the ambush and then he opened the fire. First terrorist

0: was killed by his fire. And then other people also engaged by ambush terrorist. One terrorist was running back towards the Dhara, one of the Dhara is the यूनोखंड टाइप ऑफ मकान पहाड़ों में जिनमें डंगर उंगर बांधते हैं तो उसमें वो शेल्टर लेने के लिए भाग रहा था उमंग रेन पैरल टू हेम एंड शॉट एट हेम ऑल्सो उमंग ऑल्सो गॉट ए शॉट फ्रॉम साइड फ्रॉम दिस फेलो और एनी टेररिस्ट दोज हू आर स्टिल अलाइव
1: आमने सामने की लड़ाई थी उस आमने सामने
0: फ्रॉम सिक्स मीटर इटसेल्फ
1: अच्छा
0: Each other shouted at each other, and he said, "Kafir and all that." He said, "Bloody fool, I'll kill you," and he shot him down over there. And he told his operator, "Ke Ramkishan apne CEO saab ko bolo, maine apna kaam pura kar diya hai. Jawanon ko fire jari rakhe, koi bachke nahi jana chahiye, aur mere shayad kahin lag gayi hai." So by that time, the operator approached him. Umang was no more.
1: Acha. So. तो उस मोमेंट पर उमंग भारद्वाज ने शहादत पाई उस ऑपरेशन के दौरान
0: जी
1: छह टेररिस्ट जो मारे गए
0: जिसमें दो पंद्रह पंद्रह पहले मार चुके थे छह मारे ट्वेंटी वन टेररिस्ट
1: जी तो आज हम शौर्य चक्र से सम्मानित मरणोपरांत कैप्टन उमंग भारद्वाज को याद करते हैं उनकी बहादुरी उनकी वीरता उनके शौर्य के लिए अदम्य साहस के लिए सर हम यहां पर समय बहुत कम बचा है मैं चाहूंगा कि जो मैसेजेस हमारे पास बहुत समय से आ गए थे उनको मैं आपको पढ़ करके बताऊं
0: जी
1: गुड आफ्टरनून का मैसेज है हितेंद्र दास का असम से आपके लिए और उसके बाद ये मैसेज है गुड आफ्टरनून टू कर्नल रिस्पेक्टेड सर एन आर जे सर आई एम राइटिंग फ्यू वर्ड्स टू आर इंडियन आर्मी आई बो माई हेड विद इमेंस रेस्पेक्ट एंड प्राइड फॉर आर बिलवड इंडियन आर्मी यू प्रोटेक्टेड आर बॉर्डर्स विद अनवेवरिंग करेज यू सर्व द नेशन विद सेल्फलेस डेडिकेशन एंड यू इंस्पायर एवरी इंडियन विद योर सेक्रीफाइसेस बिकॉज ऑफ यू वी लिव इन फ्रीडम एंड पीस सो एंटायर नेशन इज फॉर एवर इंडेप्टेड टू यू इंडियन आर्मी जय हिंद वंदे मातरम भारत माता की जय ये है सर शंकर लोध फ्रॉम ककरोला द्वारका सेक्टर 15 दिल्ली से
0: थैंक यू वेरी मच
1: और आर्मी ऑफिसर को और आरजे सर को नमस्कार जय हिंद जय भारत यशवंत आडमुटे धारा शिव हैं सर ये महाराष्ट्र से आपको भी बहुत बहुत नमस्कार भारद्वाज साहब से मिलने में बहुत खुशी है जी वेलकम टू द शो श्रीकांत हैं सर ये टोलगेट त्रिची तमिलनाडु से चरण कुमार हैं सर ये सन ऑफ श्री ब्रिजेश कुमार विलेज बरकतपुर डिस्ट्रिक्ट बिजनौर स्टेट यूपी से और कर्नल भारद्वाज जी को मेरी ओर से जय हिंद जय भारत ये कह रहे हैं आपको सर
0: हमारी तरफ से जय हिंद जय भारत सबको हमारे साथियों को सबको आपके परिवार को बहुत बहुत मुबारक
1: जी और सर हैं ये शांतचारा बादीगार कोकानूर हरिहार से देवनागरी डिस्ट्रिक्ट कर्नाटका रिस्पेक्टेड सर संदेश टू सोल्जर्स इज अ वेरी मीनिंगफुल एंड हार्ट टचिंग प्रोग्राम यू प्रेजेंट ब्यूटीफुली रिमाइंडिंग अस ऑफ द सैक्रिफाइसेस सर्विसेज करेज एंड पैट्रियटिज्म ऑफ ब्रेव सोल्जर्स हू प्रोटेक्ट अवर नेशन डे एंड नाइट एट द बॉर्डर्स सोल्जर्स स्टे अवे फ्रॉम देयर फैमिलीज एंड परफॉर्म देयर ड्यूटीज फॉर द सेफ्टी एंड सिक्योरिटी ऑफ आवर कंट्रीमैन देयर डेडिकेशन एंड सेल्फलेस सर्विसेज आर ट्रूली कमेंडेबल सर ये कह रहे हैं हार्टफेल्ट थैंक्स टू यू फॉर ब्रिंग सच अ मीनिंगफुल प्रोग्राम टू अस थैंक यू सो मच आपने हमें सुना और आपने हमें मैसेज किया और हैं सर ये कर्नल कमर भारद्वाज जी जय हिंद 71 आमने सामने के वार का विवरण सुनकर मन उत्साह से भर गया है कमर जी का आज भी वही जज्बा महसूस हो रहा है सर आपकी बात सुनकर के ही कह रहे हैं
0: थैंक यू सो मच
1: जी और नाम शुभ संध्या इन्होंने अपना नाम नहीं लिखा है शायद राजेश भल्ला एडवोकेट कंकर खेड़ा मेरठ से हैं ये और ये है मैसेज नमस्कार मेरठ से वीरू बख्शी आपके टॉपिक मुझे बहुत अच्छा लग रहा है और बड़ी मेहनत करी आपने बहुत अच्छा लग रहा है आपको सुनना जय भारत माता की जय वंदे मातरम और भी सर बहुत सारे मैसेजेस हैं और समय बहुत कम हमारे पास बचा है
0: ये अभी कुछ एक बार पूछ लो और ना
1: जी सर अब हम मैसेजेस बहुत सारे मैं सब नहीं पढ़ पाऊंगा क्योंकि समय है बहुत कम हमारे पास मैं सर बस चलते चलते आपसे जानना चाहूंगा रिटायरमेंट के बाद की लाइफ आपकी और आपके जो फैमिली है उसका किस तरीके से कॉन्ट्रीब्यूशन रहा अब आप किन चीजों में इन्वॉल्व हैं सर रिटायरमेंट के बाद
0: इनफैक्ट रिटायरमेंट के बाद में हमने एक स्कूल खोला था
1: जी
0: बाय द नेम ऑफ कर्नल पब्लिक स्कूल माना हुआ पब्लिक स्कूल है
1: जी

0: Let the celebrations begin.
1: पीसीपीएनडीटी कानून के विभिन्न प्रावधानों के तहत लिंग जांच करने और करवाने वालों को 3 से 5 साल तक की कैद और जुर्माने की सजा है। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।

0: செபி மூலம் இன்வெஸ்டர் விழிப்புணர்வு முயற்சி. மேலும் விவரங்களுக்கு செபி இன்வெஸ்டர் வெப்சைட்டை பார்க்கவும் அல்லது செபி சார்த்தி ஆப் டவுன்லோட் செய்யவும்.
1: पीसीपी एनडीटी कानून के विभिन्न प्रावधानों के तहत लिंग जांच करने और करवाने वाले दोनों को 3 से 5 साल तक की कैद और जुर्माने की सजा है।
2: स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।
3: பாடல் வந்து கேட்டு இணைந்திருங்கள்.